दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Swap.
1: 99.9.
2: So, ऐसी गाना यदि तर्ज कजरा मोहब्बत वाला। ये गाना 1968 दी फिल्म किस्मत, गाया सी आशा भोंसले ते शमशाद बेगम ने। बहुत ही पुराना गाना, ये दे विच कजरे दी गल करदे आ कि कजरा जिहड़ा अखां दे विच आपां पाईदा, जे पाया होवे ते ओ मुहब्बत करन वाले नूं किन्ना चंगा लगेगा। ओदी एक ब्यूटी नूं, सिंबोलिकल ब्यूटी ते अट्रैक्शन नूं इस गाने दे विच गीतकार ने लिखण दी कोशिश कीती, कलाकार ने गाया। सो बहुत वधिया लाइना, हर लाइन दे विच इस कजरे दी और अखां दी खूबसूरती दी बणत नूं दर्शाया गया।

0: करा गया।
1: आए हाय जियो जियो जियो मेरे
2: ओ वाह वाह वाह।
0: नमस्ते सरदार जी, नमस्ते मैडम। गोली मरा नाम है गोली
1: गोली, गोली। ये मुंडा जी ने
3: कनेडा
1: कनेडा लेके जाना।
3: देखो मैं नकली ब्याह कराना, असली उल्टियां नहीं करनिया। मैनू पंजाब दा मुंडा चाहिए।
0: वाह नवराज युवराज पाजी की गल कर दी। पंजाब का मुंडा, हम पंजाबी है। 15 साल हो गया पंजाब में रहते हुए। लाभ हीरा से लेके हंस राज हंस तक सब गाना आता है हमको। ए जो गीली गीली आंधी है हवा।
1: गीली गीली हवा नहीं, सिली सिली हवा
0: पाजी। वो जलंधर में होती है। बिहार में बाढ़ आया हुआ, वहां पहुंचते गिल्ली हो जाता है।
3: ना ना ना ना ना।
1: ओ प्रावा तू एटा बैठ गाना ना गा प्लीज। अगे आ इधर।
3: ए मेनू नहीं चलना, मेनू तो पंजाबी बंदा ही चाहिए। सिंपल
0: का पंजाबी पंजाबी जा रखा पंजाबी पंजाबी।
4: Swan 99.9 Sydney's West.
5: ऐसी नकली ब्याह दियां गल्लां बातां असली जिंदगी नाल टुकियां होईयां। समा इस वेले 9:56 हो गए ने। इहदे नाल ही अज दा प्रोग्राम खत्म करन दा टाइम भी आ गया। ये आस करदे आं कि रहिंदा होया दिन पूरा हफ्ता सारिआं दी जिंदगी 'च खुशियां वाला होवे। तंदरुस्त रहो, अपने अपने सपने जिउंदे रखो। तो आउंदे ऐतवार फिर तुहाडे नाल मुलाकात होगी। तद तक रब राखा। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ